0: May 2026. The closure of the Strait of Hormuz has caused havoc in parts of Pakistan that have been left in the dark. Chronic power cuts, coupled with rising electricity bills, has spilled into anger on the streets. Today's rally is organised by the Lahore Rickshaw Union. Liquefied natural gas from the Middle East that contributes a fifth of Pakistan's energy mix is disrupted. Coupled with a dramatic surge in summer electricity demand, Pakistanis are facing power cuts on an average of 7 hours per day. When power plants cannot produce electricity to match demand, load shedding or power cuts are implemented by the government to ration supply.
1: Petrol mehanga kar diya gaya, load shedding shuru kar di gayi, bijli aati hai to gas chali jati hai, aur phir is awam pe ke jinki dukane raat 8 baje band kar di jati hai, un logon ko taxes ki yalghar kar di gayi hai, logon ka jeena mahal ho chuka, log is waqt bilkul taiyar hai ke log is hukumat ke khilaf nikle. Mehngi bijli, mehngi bijli, mehngi gas, mehnga petrol.
2: Petrol ki keematon ke andar izafa wapas le, load shedding khatam kare taaki awam ko sahuliyat mile, taaki hum milkar duniya ko ek mazboot paigham de sake. ये लाहौर में आज ये पहला मुजाहरा है तो अगले चंद दिनों के बाद पंजाब के बाकी ज़िला के अंदर भी इसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और जब तक हम आवाम की आवाज और आवाम के मुतालबे जो ना पूरे जोर अंदाज से नहीं रख पाएंगे ये सिलसिला जारी रहेगा.
0: Rising LNG, diesel and furnace oil prices add to the woes. Per unit electricity prices have also shot up by 155% over the last 3 years. Power outages have cost Pakistan's economy more than $4 billion annually. Small and medium enterprises are particularly impacted due to their small profit margins.
3: ये भी रिसीव इसे कह लो गिनती करके
4: ठीक
3: है हैंगिंग लूप नहीं लगाया इसको
4: लगवा दो.
5: मेरा नाम सैयद शुएब अली जाफरी है और मेरा एक स्टिचिंग यूनिट है. मैं लोकल क्रीम लग मार्केट का और कुछ ब्रांड्स हैं उनका साथ काम करता हूँ.
3: यहाँ जरा इसको सही तरह सेट कर लिया आप प्लीज़
6: बड़ा मसला पे है.
7: ये 3 घंटों में ना ये काम जो आधे घंटे काम 3 घंटों में मेरा हो रहा.
6: जी मेरी गल सुनो कोई इजाफी टाइम ला लो पार्टी ने गल नहीं सुनी.
0: Power cuts have resulted in an average output loss of 25% across Pakistan, particularly affecting industries like textiles and machinery. This equates to roughly 2.5% of the country's GDP.
5: देखिए बिजली तो हमें ना होने के बराबर चाहिए होती है लेकिन अगर बिजली आएगी नहीं तो तब भी हमारा काम बिल्कुल सफल होगा ना. चलें ये काम आप लाइट पे डालते ही नहीं हैं हम पैटर्न बना लेते हैं. अब जब उसकी कटिंग करनी है तो उसके लिए हमें लाइट चाहिए कटिंग के लिए लाइट चाहिए. उसके बाद जब वो कटिंग हो जाएगी फिर जितना भी काम है उसके बाद सारा लाइट का काम। लोड शेडिंग की वजह से ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो आप एक वीक दो वीक ऊपर चली जाती हैं, जिसकी वजह से हमें 25% पेनल्टी पड़ती है, 20% पेनल्टी पड़ती है, और जितने भी हमारे पास वर्कर्स हैं उनका घर जो सा है वो उस हिसाब से नहीं चलता। एक वर्कर है उसने यहाँ पर तीन मैक्सिमम 1,000 या 2,000 रुपये का काम करना, ठीक है, अगर लाइट ही नहीं होगी तो वो 1,000 रुपये लेके जाएगा।
6: देखिए हर चीज़ पैसे पे नहीं आप डिपेंड करते, आप का इमेज का नुकसान हो, पार्टीज आपको दोबारा काम नहीं देती। देखिए पार्टीज को काम चाहिए, पार्टी उसी को काम देगी जिसके पास ये सारी फैसिलिटेटेड चीज़ें होंगी ना।
0: Countrywide power shortfall has reached 4,500 megawatts, enough power to light up 4 million homes.
8: In the past 1 month, there have been about 2 weeks because of lack of LNG import and disruptions coming in from the Strait of Hormuz, and also lower hydel generation due to lesser requirement of the provinces to take water out of the dams. Because our hydel power, the first priority is irrigation. So however much irrigation water is required from these dams, that's how much hydel power is produced. So we had a situation in the last 2 weeks of April where hydel was low, there wasn't any LNG, and so there were disruptions. And this is going to also impact the cost.

0: आप जौहर टाउन ले लें, आप DHA चले जाएं, आप ठोकर वाली साइड पे चले जाएं, डिफरेंट जोन बन गए, अब हर तरफ अब सोलर बिक रहा है। हालांकि पाकिस्तान में चीज़ों के रेट बढ़े हैं, महंगाई ज़्यादा हुई है, चीज़ों के रेट बढ़ने चाहिए थे, सोलर महंगा होना चाहिए था, लेकिन सोलर सस्ता हुआ है, वो इसलिए क्योंकि नई से नई चीज़ आ रही है।
1: 2-4 दिन
0: बाद कहो यार घर का सड़ बल्ब सड़ जाता, पहला नहीं सड़ता हूँ सड़न लग गया, क्यों करंट साफ नहीं गा, ऐसा करंट होता है फिल्टर, फिल्टर करंट होता है, लोग क्यों लगवाते हैं ऐसी वजह तो लगवाते हैं कि यार लाइफ ज्यादा है। जो सोलर है ना ये 100% इम्पोर्टेड आइटम है, प्लेट्स इन्वर्टर लिथियम बैटरी 100% चाइना की इम्पोर्ट की जाती है। अगर गवर्नमेंट थोड़ी सी उनको एजुकेट किया जाए या थोड़ा सा उनकी तालीम या थोड़ा सा उनको समझाया जाए या अगर फ़ौरन आप ट्रेनिंग दें उन्हें तो वो अच्छा कर सकते हैं काम, उसके अंदर हाइब्रिड भी बना सकते हैं। एज अ बिजनेस प्लान देखा जाए तो सोलर प्रॉफिटेबल चीज़ है, सोलर अगर प्रॉफिटेबल ना होता तो जगह जगह शॉप्स नहीं बनती, और सोलर की वजह से मेरे ख्याल से लोगों के पास काफी ज्यादा इनकम आई है और काफी फायदा हुआ है लोगों को।
2: As Pakistan's population grows, electricity demand has risen by 21% since 2024. That additional demand has been met entirely by solar power. Rising solar demand has also created new economic opportunities, with green jobs expected to continue growing through 2030.
3: इस सोलर रश को लेके कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे सक्सेस इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनसे दूसरे ममालिक स्पेशली जो ग्लोबल साउथ में डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो सीख सकते हैं। Solar panels did not just deliver cheap electricity to the country. They helped mobilize 17 to 18 billion US dollars of investments, and that too without any kind of, you know, support from the financial market. And at the same time, the solar sector helped create 500,000 jobs, and it was happening around the time when nothing else was really working in the country, and then the economy was in a really bad shape.

0: Pakistan's solar revolution is no longer confined to homes and villages. It is now transforming the country's industries. A 394-kilowatt solar system now powers the Khawaja Flour and General Mills factory in Hassan Abdal. In a country where high energy costs and frequent power cuts challenge businesses every day, this factory owner has become almost energy independent.
1: This solar system, main jo wire iske panel lage hue tha, wo wahan se iski sari wires ja rahi hain. Is ye fir aage se jo hai na ye system sara ye inverter lage hue hai. Theek hai ji. Ye inme sari ye bijli jo hai is inme jati hai. Fir ye aage is waqt mil jo hai na wo chal rahi hai. और सारी बिजली जो है तकरीबन इस वक्त 300 किलोवाट सोलर दे रहा है और बाकी जो है ना 100 किलोवाट जो हम वापस दे रहे हैं।
0: The mill has significantly lower operational expenses than its competitors.
2: ये जब 2000 में मैंने मिल चलाई उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग का भी प्रॉब्लम था और बिजली महंगी भी थी लेकिन बिल जो हमारा 20 25 30 लाख आता था वो कभी आधा हो गया कभी जीरो हो गया एक बचत इसमें काफी हुई है एक तो हमारा बिजली का बिल तकरीबन जीरो हो गया और जैसे कि आपको पता है कि बिजली बहुत महंगी भी होगी है तो इस सोलर की वजह से हमें अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने में आसानी हो रही है क्योंकि उसका जो ओवरऑल जो हमारा एक्सपेंस है वो कम हो गया है तो सोलर ही है जो इस इंडस्ट्री को बचाएगा इंडस्ट्री के लिए ये एक हिसाब से ब्लड का जो है वो दर्जा रखता है कि जिस तरह जिसके लिए ब्लड हमारा ज़रूरी है या सांस लेना ज़रूरी है या सोलर भी इस वक्त जो है वो एक सांस लेने वाली बात है इससे इंडस्ट्री फलेगी फूलेगी और लोग जो है इसमें और भी आ रहे हैं तो ये इंडस्ट्री के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है
0: In just a decade, Pakistan has built a solar industry that is expanding rapidly. Today, more than 200 solar panel, inverter and battery manufacturers from all over Pakistan have descended in Lahore to launch new products.
3: उसकी सर सीएनएफ कराची रेट दे रहा है $23,000 कंबाइन हमारा कंपैक्ट यूनिट है ऑल वन में ही है
4: लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है यार
0: The solar boom was fueled by an influx of low-cost solar panels from China. It's helped save billions in expensive fossil fuel imports.
4: In Pakistan, usually people go for cost, which should not be the case in solar panel, inverter or batteries, because these equipments give you energy backup for a longer period. Quality should be the first and foremost priority. For any customer who is going for solar solution. We have installed around 51 gigawatt in Pakistan and the potential is 2800 gigawatt. If we install 100 gigawatt, right, 10 to 12 billion dollar saving. We are wasting so much money in electricity bills, agriculture and industry. So just imagine how can we save so much from energy and we can balance our trade deficit. The more cost effective it is, the more competitive we are. The saving the individual do, it can be invested in kids' education, health and food. It will reduce carbon emission, bring Pakistan out of debt and it will result in prosperous Pakistan.
0: Private rooftop solar production is now Pakistan's single largest source of electricity, accounting for more than 25% of total production in 2025, ahead of gas, coal, hydro and nuclear.
5: It was a perfect storm. There were so many variables which actually lead to this revolution. Everybody was interested to import solar equipment. The prices were collapsed in China, so that actually gave an opportunity to the investors. So all the investors jumped in to gain that profit. people had the buying power. In last 5 to 8 years, we imported around $22 billion solar equipment. So that's not by government, that's by us people. It's a people-driven revolution. So all these things combinedly resulted this revolution.
0: The Pakistan government is now increasing quality controls by establishing the Pakistan Korea Testing Laboratory, the first state-of-the-art facility for testing imported solar panels in Pakistan.
6: On average, 17,000 megawatt jo hai, wo import ho rahe hain solar panels each year. So when there is such a bulk quantity, if the quality is compromised, then the technology can defame and the consequences can be very much. So we have to ensure the quality of the quality. Our plan is that we have to do the mandatory list of items which we have to quality control in our regulator. We have to do it in it. And then there is a scheme hai, Foreign Manufacturing Licensing Scheme. उसके अंदर ये होता है कि जो रेगुलेटर है उसका इंस्पेक्टर जाता है मैन्युफैक्चरर की फैसिलिटी को विजिट करता है वहां से रैंडम सैंपल पिक करता है उन रैंडम सैंपल्स को जो है वो हमारे पास वो लैब में भेजेगा हम उसके ऊपर कोई 3 मंथ्स लॉन्ग जो है वो रिग्रस टेस्टिंग करेंगे एज पर स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स
0: ऑपरेटिंग अंडर द पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी एवरी इंपोर्टेड कंसाइनमेंट ऑफ सोलर पैनल्स अंडरगोस रिग्रस टेस्टिंग Today, one panel is undergoing a wet test.
6: Standard हमें recommend करता है कि आप इस चीज को भी test करें और ensure करें कि जब बारिश हो रही है panel wet है तो under wet conditions ऐसा तो नहीं है कि जो internal इसका जो current है वो outer frame तक उसकी access हो short हो जाए और जो इसको user है कोई इसको हाथ लगाता है उसको electric shock लगने का अंदेशा तो नहीं है कि हम इसको पूरा डिप करके पानी के अंदर और फिर जो है वो इसको देखते हैं कि एक कनेक्शन हमने सर्किट से लिया हुआ है इसके इंटरनल सर्किट से उसको पे करंट अप्लाई किया हुआ है और दूसरा कनेक्शन हमने इसके आउटर फ्रेम से लिया है और पानी से लिया है तो हम ये देख रहे हैं कि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है वो अंडर वेट कंडीशंस बाहर तो नहीं आ रही है
0: पाकिस्तान्स एक्सट्रीम क्लाइमेट पुट सोलर टेक्नोलॉजी टू द टेस्ट फ्रॉम एक्सट्रीम हीट to intense monsoons and windstorms. Rigorous stress testing ensures solar panels can withstand these conditions and perform reliably.
6: ये हमारी जो मशीन है इसके अंदर बेसिकली हम सिमुलेट करते हैं कि अगर पैनल हमारा जो है वो फील्ड के अंदर लगा हुआ है माउंटेड है और जलाबारी है हेल स्टॉर्म है तो ऊपर जो आइस बॉल्स फॉल कर रहे हैं इसके ऊपर उनको सस्टेन करने की कि ये ब्रेक ना हो इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है तो हम उसको सिमुलेट करने के लिए हमने जो हमारी जो लिटरेचर बताता है कि अप टू 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ भी आइस बॉल जो है वो इसको हिट कर सकता है और ये मशीन जो है ये पूरे पैनल के ऊपर जो रिकमेंडेड एरियाज हैं हम प्रोग्राम बना देंगे और उन तमाम एरियाज के ऊपर जाके ये उस सेट वेलोसिटी के साथ हिट करेगा और हम देखेंगे कि इसने सस्टेन किया है कि नहीं किया और इसके बेसिकली प्री और आफ्टर के जो है वो टेस्ट होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि ये टेस्ट इसने पास किया कि फेल किया
0: Improved quality and wider adoption are transforming the lives of vulnerable communities across the country.